चुचलपा थ नेपाल सम्बत छिन्चासव पी खुद तसलागा तीर्थीय थु रेडियो नेपाल ख अनि नादिस जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार। सरकार अध्यादेश प्रतिस्थापन या तहगु सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्डरिङ निवारण नपाया थिति पेङ्गु विधेयक प्रतिनिधि सभा सम्पारित अगुदु सभाया मिकसुङ्गु बैठक सार्वजनिक खरिद निकगु संशोधन विधेयक 2083 सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्डरिङ निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक 2083 सहकारी नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 व स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नापाया छु नेपाल एन या त संशोधन यायगु विधेयक 2083 पारित आगु ख बैठकै प्रधानमन्त्री वरेन्द्र सहाय तथा संघ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सुविता गौतम सार्वजनिक खरिद निकगु संशोधन विधेयक 2083 पारित यामा दका अथ्याना विधेयक या दफावार सल सनलुङ विशेषण लिस अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेम बियादिगु ख सा सहकार्य नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 दथिया सल सनलुङ विशेष भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावल लिस बियादिगु ख सा अध्ययना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नापाया छु नेपाल एनिया संशोधन यायगु विधेयक 2083 स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता पारितियामाधका विधेयक सभा न्ह्योने न्ह्योभयादिगु ख अध्ययना अध्यादेश प्रतिस्थापन यायता हगु पेङ्गु विधेयक दति लागु संशोधन मध्ये मन्त्री पिसन लिस बिगु जो स्वीकार याना दिगु व सांसद सन्लित कागु बाहेक फुक्क संशोधन प्रस्ताव सभा अस्वीकृति आगु ख प्रतिनिधि सभा मेगु बैठक थे असार 22 गते सोमबार सुतसिया छिन्चता इलेक्ट्रोनिक गोसादु राष्ट्रिय सभा मेगया बैठक विनियोजन विधेयक 2083 कथ गुगु मन्त्रालय विनियोजन छ दथि समूह कथ सल व्याकगुदु मन्त्रालय गत विनियोजन छ दथि सल सम्पत्ति कापी सांसद सन लजका बुलङ्की गु गरिबी न्यूनीकरण औद्योगिक पुनस्थापन कृषि उत्पादन उपके गु प्रतिभा पलायन दिके गु दलित समुदाय त राज्य मूल प्रभाषा हेगु नापाया जनता तेगु आशा पङ्के गु बजेट केन्द्रित जुई मागु धयादिगुदु अध्ययन सल सांसद पर्यटन प्रबन्धन वातावरण संरक्षण लागु औषध प्रयोग निरुत्साहन शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा थे जागु ज्यासु या तथ्विक थ्याबी त सुझाव व्यादिगु खस भूमिहीन सुकुम्बासी तेगु व्यवस्थापन या नीति बजेट मागको मफ्यागु धासे संसद तेसम वास्तविक सुकुम्बासी या मसिका मागु कथम व्यवस्थापन या त सरकार ध्यान बी मागु संसद तेसन नीति अ ख जनता या स्थायी आवास व्यवस्थापन मय चिकगु सोनिगया सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीति बजेट प्राथमिक नोमवागु थथेना शिक्षा लगायत आर्थिक विकास नपा स्वायत्ता व्यावसायिक व लजगा जागु शिक्षा नीति मागु दासे मागु शिक्षक दरबन्दी उपके मागुली संसद पिसम्पव्यादिगु ख सभाया मिगया बैठक युवा श्रम तथा रोजगार सूचना तथा संचार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन शिक्षा तथा खेलकुद स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महिला बाल बालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सामाजिक सुरक्षा विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन व कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय नापाया विनियोजन छँदथि सलजुगु ख शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा दति छ को प्रतिबन्ध फेनेता फिफा प्रतिनिधि नापा सहल या कुत जुयासँगको धयादिगुदु मन्त्री परिषदीय मेगा बैठक या कोचिनात सार्वजनिक यागु झोले संचारकर्मी संसद कार्य प्रवक्ता नापा शिक्षा मन्त्री पोखरेल आ यागु हाठ्या

ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ जरिवाना कथ ठुकेदानिस सरकार पेट्रोलियम पदार्थ निर्वाध बिक्री वितरण व्यवधान यही गु पेट्रोल पम्प या त झिगु लाख जरिवाना व झिङ्यानु पेट्रोलियम पदार्थ या त इने गु दिका बिगु कानुनी प्रावधान या व्यवस्था या गुदु नेपाल निगम सञ्चालक समिति पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली संशोधन या नाथो प्रावधान हगु ख संशोधित नियमावली कथम बन्द यही गु पेट्रोल पम्प व्यवसाय या त सुङ्गु निसे झिगु लाख जरिवाना व न्यानु निसे झिङ्यानु तक्क पेट्रोल डिजेल इनेगु दिकगु उद्योग डिकेगु उद्योग मन्त्री या स्वकीय सचिवालय जानकारी बिगु ख भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावला बर्दिया सम हिग निसे जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा लाल पूर्जा इनेगु अभियान ह्यागु कनादिगुदु बर्दिया या बडैया ताल गाउँपालिका चार या निगुदुमा भूमिहीन दलित व भूमिहीन सुकुम्बासी छेजया त मन्त्री रावला लाल पूर्जा लल हनादिगु ख रसुवा गडिया मितेरी तासम हिग निसे सवारी जोल ह्यागुदु वङ्गु दया असार चौबिस गते लेन्दे खुसी वोगु खुसी बाल सिमेटिया मेसिनरी ता चुसिका यङ्के धुङ्कानी बेली ब्रिज देका परीक्षण नापा या धुङ्कानी सवारी जोल यहाँ त सङ्गु इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरे जानकारी बिगु ख बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी निनुयङका अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन मिग निसे ह्यागुदु बौद्ध धर्म संस्कृति व सम्पदा संरक्षण वैश्यन लागु पर्यटन प्रबन्धन विशेष केन्द्रित सम्मेलन नेपाल नापा भारत चीन श्रीलङ्का फिनल्यान्ड या बौद्ध विद्वान सम्पदा विज्ञ अनुसन्धानकर्ता व शिक्षाविद तेगुवती दु लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय गोसासाङ लुम्बिनी प्रदेश सरकार या उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय या ग्वालीसाङ गोसाको सम्मेलन लुम्बिनी लागाया बौद्ध सम्पदा संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्धन व सेन लागु पर्यटन विकास सम्भावना विशेष सहल जुइगु व अध्ययन अन सेलागु पर्यटन विकास विशेष थिथि देय विज्ञ तेस छगु दर्जन अनुसन्धानमूलक ज्याजो नापान यहाँ भइगु ज्याजो त दु यातायात व्यवस्था विभाग हिग निसे पेट्रोलियम पदार्थ या मुह या व अन्तर प्रदेश से न्यायगु सार्वजनिक व मालबाग सवारी जोल या भाडा मिग निसे छेलीगु या न निगु प्रतिशत कोकागु दु विभाग हिग सूच पिथासे सार्वजनिक यातायात व मालबाहक सवारी जोल या भाडा निगु प्रतिशत म यागु ख थुया नियम विक्रम सम्बत 2083 वैशाख 12 गते या मन्त्री स्तरीय कोचिना कथन सार्वजनिक व मालबाहक सवारी जोल या भाडा न्यागु प्रतिशत उपकगु ख सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा प्रवक्ता तेसन राष्ट्रिय हित यता केन्द्र खेत या सूचना प्रभा या मागु धया दिगुदु संचार मन्त्रालय मिग गोसागोको प्रवक्ता सम्बा ज्याजो सा मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा थिथि मन्त्रालय व सरकारी निकाय प्रवक्ता पि थथगु निकाय कथा सरकारी आधिकारिक प्रवक्ता कथा महतचागु भाला जुगु धया दिगुदु मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा सार्वजनिक जुई मागु आधिकारिक सूचना धासा इलेहे प्रभा जुई मफुगु कना दिसे गोप्य ते मागु सूचना अनधिकृत कथा पिहावना चोङ्गुले मोह यायता व संवेदनशील सूचना जुएके मबिता मागु सावधानी कगाता बब्या दिल विशेष अदालत नेकपा एमाले नोकु व पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल या त सम्पत्ति शुद्धिकरण नपाया मुद्दा शोकको खुसी खुनिया म्यातना अनुसन्धान यायता अनुमति ल लागुदु विशेष अदालत या न्यायाधीश नारायण प्रसाद पौडेल हेमन्त रावल व उमेश कोइरालालाई जा लस मिग पूर्व अर्थमन्त्री पौडेल या त खुनुया नीति कुना अनुसन्धान यायता सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग या त उजम बिगु ख उपाध्यक्ष पौडेल या त थोए असार 8 गते सुर्खेसँग जोना अनुसन्धान या नीति न्यायिक हिरासते कुना तगुदु कर्तव्य ज्ञान मुद्दा उच्च अदालत जनकपुरसँग कै सजाय ठहर जुम्मा पूर्व सांसद लक्ष्मी महतो कोइरिया त प्रहरी जोङ्गुदु महतरी गौशाला नगरपालिका दुई निघौल छेदुमा पूर्व सांसद कोइरिया त गौशाला नगरपालिका पाँच एमाले पार्टी कार्यालय न्हने समिग सनिल जनागु जिल्ला प्रहरी कार्यालय महतरी प्रवक्ता व प्रहरी नायब उपरीक्षक पञ्चलाल गोले जानकारी बियादिगु ख 2072 भौदौ 25 गते ड्युटीसँग खटेजुयाचोमा सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन बिक या त स्यागु कर्तव्य ज्ञान मुद्दा महोत्तरी जिल्ला अदालत या फैसला अख यासे उच्च अदालत जनकपुर थोए असार 17 गते यागु फैसलासँग कोइरी या त न्यादया कै सजाय ठहर यागुदु आदेश सम्पिने या बुख

चु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ सानगिर रेथाङनी दा झेनमुला ङ इन्दिरा थिङ राष्ट्रिय सभाला तिनीला चिसाङरी विनियोजन विधेयक 2083 ला लोलो लोलो शीर्षक कार्यरी ह्युल चोहो रो ह्युल चोहो थेन काइब्लोन गेजाङ ह्युलबाङ योजना आयोग लाछ्याम दिम रुङ रोङसा नोर पूर्वाधार विकास ऊर्जा क्युनियर थेन सिंचाइ सानाम रिथेन पर्यावरण थेन उद्योग छोङ आपूर्ति ब्लोन खाङला विनियोजन थोरी काठुई ताबामुला विनियोजन विधेयकला शीर्षक कार्यरी नेपाली काङ्ग्रेसला सांसद दुर्गा गुरुङ नेकपा एमालेला प्रेम प्रसाद दङ्गाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीला सांसद उर्मिला अर्याल थिएन राष्ट्रिय जनमोर्चाला सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्मासे लेङमो थान्छ्युबामुबा तिनीला चिसाङरी सानाम री थिएन पर्यावरण ब्लोन खाङला विनियोजन शीर्षक थोरी सांसद कार्य मीना सिंह रखाल थिएन सोमनाथ पोर्तेल से खर्च थाबा व्यवस्था थान्छ्युबामुबा काइब्लोन बालेन्द्र शाहला चोहबाङरी तिनी संवैधानिक सेङझाङला चिसाङ चिबानमुला काइब्लोन थेन ब्लोन सेङझाङला गेजाङरी धत्ते चिसाङ चिबानमुला चिसाङरी संवैधानिक निकायला थानथान धान्डी नियुक्ति लाबा तामरिन काठुई लाबा तामुला बिसी नेपाली काङ्ग्रेसला गोबोन भीष्मराज आङदाम बेचे सुङबामुला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाला ग्रेन गोबोन बालेन्द्र शाहला गोबाङरी धत्तेला सरकार शोभा नाङ्गर ग्यार्जा गिक दिङ छोबानमुला चुधुरी नेपालला रोङसा नीतिला प्राथमिकता कादेला ताम्री काइब्लोन राङसेन लोलो लोलो युल्ला ग्लेबोन थेन नेपालला विकास साझधार कादेदा जानकारी पिन्स्युबामुला नेपालला कूटनीतिक पहुँच लेना लाबारी समृद्धि थेन सुशासन दा केन्द्रारी थान्ची चु सरकार से युल्ला मोख्युल ब्रेलबा थेन लाबारी थेन कूटनीतिक सेङबारी छार बङ बामुला काभ्रे पलाञ्चोक धुलीखेल्ला याम विश्वविद्यालयला सोमची गिक्षा दीक्षान्त वाल्डी स्यार्थेन क्लाङ ब्लोन सस्मित पोखरेलसे सरकारसे नेपाल दिन गुणस्तरीय स्यार पिनबा लासी गे लाबान मुला बिसी सुङबामुला स्यार ब्लोन पोखरेलसे समृद्ध ह्युल सोभारी ब्रिबा डोबा भ्योन कादे तोला सुङबान याम्बु विश्वविद्यालय ग्याम किन्बा ज्ञान सिप थेन अनुभवदा नेपाल दिन उद्योग उपयोग लासी ह्युल सोभारी रो लाबादा दीक्षित लोबोन्दा मोइजेन लासिबामुला वाल्डी रो कुलपति प्राध्यापक डाक्टर ऋषि केस वागले भारतला डेङ्कन क्याम्पसला कुलपति प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र पाटन धारेसे दीक्षित ताबा लोबोन्से राङलान युल्बा सोबारी गे लाबादा मोइजेन लासिबामुला सा व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला थिएन सामान्य प्रशासन ब्लोन प्रतिभा रावल से बर्दिया ग्याम तिलमा हेन्से सा धनी प्रमाण पुर्जी पिनबारी ती बामुला बर्दियाला बडैया ताल गाउँपालिका भ्लिला निचुई कु सा दिम आरेबा दिम थेमेदा ब्लोन रावल से लाल पुर्जा पिन्स्यु बाखिन्ला विशेष थिमकाङसे नेकपा एमालेला रोचोहो थिएन नोर ब्लोन विष्णु गाछाला नोर ब्लोन विष्णु प्रसाद पौडेलदा सम्पत्ति सुदृढीकरण मुद्दारी सोमछा रेम म्याद काप्सी च्याबा साइबारी पाङबामुला विशेष थिमकाङला थिम्पो उन्कादे नारायण प्रसाद पौडेल हेमन्त रावल थिएन उमेश कोइरालाला इजलासे तिलमा गाछाला नोर ब्लोन पौडेलदा दोषी डुरा थुनारी थान्सी च्याबा साइबारी सम्पत्ति सुदृढीकरण अनुसन्धान विभागदा अनुमति पिनबामुला सानाम रिथेन पर्यावरण ब्लोन खाङसे बर्ड फ्लू ग्याम प्रभावित ताबा सानाम बोन कादेदा क्षतिपूर्ति पिनबारी पशु सेवा विभागदा करोड घाँचुई टाङ्गा पिनबामुला ब्लोन खाङसे बर्ड फ्लू ताबा गोरचुई गिक झोङ्री साइबा नागा फुम्थेन दानाला क्षतिपूर्ति पिनबारी होजा टाङ्गा विभागदा पिनबाहिन्ला ब्लड फ्लू ग्याम नोर नोक्सान नाबा सानाम बोन कादेदा राहत पिनबारी विभागसे ब्लोन खाङथेन टाङ्गा रिबा विभागला सुङबोन डाक्टर मुकुल उपाध्याय से निकासा ताबा टाङ्गा पीडित सानम बोन कादेदा क्षति ताबा निश्चय 100% धोना क्षति

ती पिनबा बिसी सुङबा मुला निबा चैत्र हेन्से स्यार थुम ग्याम लेबारी तिबा बर्ड फ्लू संक्रमण दाते गोर चुई गिक झोङरी मराङबा मुला पशु सेवा विभाग से बर्ड फ्लू ताबा नागा हाँस बटाई नागा चुङबा याङसाम थेराङबा छोङबोन कादेदा कारबाही लाबा बिसी पाङबा मुला मिनिला लुइदा गोबारी मोइजेन लाबान विभागला सुङबोन डाक्टर मुकुल उपाध्याय से बर्ड फ्लू ताबा नागा चुङबा याङसाम थिम अनुसार कारबाही लाबा बिसी सुङबा मुला निबा चैत्र हेन्से हुल्ला गोर चुइगिक झोङरी लेबा बर्ड फ्लूला भाइरस खतरा लेबारी खाम्बा ताबासे सावधानी किनबारी विभाग से पाङबा मुला सरकार से पेट्रोल छिउगु ग्लुबा चुङबारी समस्या सोबा पेट्रोल पम्दा लाख चुई टाङ्गा जरिमाना लाबा थिएन चुई घारा पेट्रोल चुङबारी आपिनबा ठिम सोबा मुला नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति से पेट्रोलियम चुङबा निमाओली संशोधन लासी चु ठिम थान्बा हिन्ला पेट्रोल पम्प से लामा ओने हुल नाङ्री पेट्रोल छिगु किनबारी मिनिदा समस्या ताबा लिछा उद्योग छोङथेन आपूर्ति ब्लोन गौरी कुमारीला निर्देशन दि निगम से विनियमावली ऋण जरिमाना किनबा थिएन चुङबारी रोगका लासी पिनबा ठिम भाबा हिन्ला निजामती कर्मचारी अस्पताल ला सेवा इकाइ सेङबा ताबा मुला सा व्यवस्था सहकारी संघ मामिला थिएन सामान्य प्रशासन ब्लोनखाङ नाङरिन तिनी हेन्से चु सेवा इकाइ सेङबा हिला निजामती कर्मचारी दा सहज तागाई बिसी अस्पताल ला सेवा इकाइ सेङबा

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासँ सुनल जा मैथिली भाषामे समाचार। राष्ट्रसभाके सांसद सब सरकार बजेट विनियोजन करैत काल ध्यान दऽ कऽ प्राथमिकताक आधार पर करबाक कतौ अधिक तऽ कतौ शून्य करऽ नहि चाही से धारणा रखने छथि। बैठकमे आई विनियोजन विधेयक 2083 मंत्रालयगत विभिन्न शीर्षक उपर विचार विमर्शमे सांसद चन्द्रबहादुर केसी सरकार 100 दिनके यात्रा कऽ रहल कहैत राज्य सब नेपालीके सजिया भेलासँ विकासमे आवश्यकताक आधार पर बजेट विनियोजन करबाक चाही से सुझाव देलनि। सांसद रंजीत कर्ण राष्ट्रीय गौरवके आयोजना सब निर्माणक लेल बजेट पर्याप्त होबाक चाही आ समयमे निर्माण समाप्त हेबाक चाही विषयमे ध्यान देल जेबाक चाही बतौलनि। सांसद रेणु चन्द खून सङ्ग साटिकँ आनल गेल संहिता भेलासँ एहिके प्रभावकारी कार्यान्वयन कऽ सुदूरपश्चिमके विकासमे ध्यान पहुँचेबाक चाही पर जोर देलनि। सांसद गोमा देवी तिमिल सिन्हा नेपालके विकास आ समृद्धिके लेल उद्योग धन्धा सञ्चालन करऽप्रति सरकारके ध्यान आकर्षण करबैत पहिल सञ्चालन कयने उद्योगसँ बन्द करैत जयबाक आ मुदा नहि खोलाके कारणसँ देशके विकास सम्भव नहि भेल धारणा रखलनि। सांसद पदम बहादुर परियार भूमिहीनके व्यवस्थापन करबाक बात अयलापर 12 लाख सुकुम्बासीके एक वर्ष भीतर व्यवस्थापन करबाक आवश्यक पर्याप्त बजेट नहि आयल प्रति सरकारके ध्यानाकर्षण करलनि। सांसद सावित्री मल मन्त्रालयगत वार्षिक बजेटमे पेट्रोलियम उत्पादन सञ्चालन कहल गेल बावजूदो दैलेखमे भेल मिथेन गैस उत्पादन करबाक विषयमे कोनो बजेट नहि अलग कयल गेल प्रति सरकारके ध्यानाकर्षण करौलनि। विनियोजन बजेटके शीर्षक अन्तर्गत आय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गृह मन्त्रालय ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय राष्ट्रपति कार्यालय उपराष्ट्रपतिके कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदके कार्यालय राष्ट्रिय योजना आयोगके सचिवालयके विषयमे आइ विचार विमर्श भेल अछि। राष्ट्रसभाके दोसर बैठक अखाड़ 20 गते शनि दिन 1:15 विनियोजन विधेयक बाँकी रहल मन्त्रालयगत विचार विमर्श होयत। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल सरकार नेपालमे गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराबक लक्ष्यके संग काज कऽ रहल बतौलनि अछि। काभ्रे पलाञ्चोकके धुलीखेल स्थित काठमाण्डू विश्वविद्यालय केयू के आयोजित 31 दीक्षांत समारोहमे ओ समृद्ध आ समुन्नत समाज निर्माणक लेल शिक्षित युवाके सक्रिय भूमिका आवश्यक रहल धारणा रखलनि। मंत्री पोखरेल काठमाण्डू विश्वविद्यालयसँ अखन धरि विविध विधामे 51,000 अधिक जनशक्ति उत्पादन भऽ चुकलाक कारणे हुनका सबके सेहो सरकारके सहयोगक समुन्नत समाजके लेल देखने सपना पूरा करबाक चाही एहन अपेक्षा केने स्पष्ट कयलनि। मंत्री पोखरेल केयू हासिल केने ज्ञान सीप आ अनुभव नेपाले में सदुपयोग करैत राष्ट्र निर्माण में योगदान देबाक लेल दीक्षित विद्यार्थी के आग्रह सेहो कयलनि। उपकुलपति प्राध्यापक डॉक्टर ऋषिकेश वागले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ ऑटोमेशन के तीव्र विकास संगे प्राविधिक दक्षता मात्र नहि भ विवेक नैतिकता सांस्कृतिक चेतना राष्ट्रप्रति के जिम्मेवारी के सेहो संग संगे आगू बढ़ायल जेबाक चाही पर जोर देलनि। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाके चालू आर्थिक वर्ष के अघन धरिके बकौता रकम भुगतानी कयलक अछि। बोर्ड आ एक विज्ञप्ति जारी करैत सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाके बकौता बापत उपलब्ध कराबयवला 23,44,02,98,015 भुगतानी कयल गेल जनौलक अछि। बोर्ड स्वास्थ्य बीमा बोर्डमे आबद्ध सम्पूर्ण सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था सबके गत अघन महीना धरिके दावी बकौता क्लियर भेल जनौलक अछि। गत पुस्त दावी भुगतानी करबाक लेल आवश्यक बजट व्यवस्थापन तथा टिकाऊ वित्तीय स्रोत सुनिश्चितताक लेल संबंधित निकाय संग निरंतर समन्वय आ पहल भऽ रहल बोर्ड जनौलक अछि। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सब सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था के बीमित सेवाग्राही के उपचार सेवा में कोनो प्रकार के अवरोध व कठिनाई सृजना नहीं कर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अंतर्गत निर्धारित मापदंड बमोजिम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करेबा लेल सेहो निर्देशन दिलक अछि। बोर्ड सम्पूर्ण बीमित सेवाग्राही के स्वास्थ्य बीमा अंतर्गत उपलब्ध सेवा के जिम्मेवारी वहन करैत सदुपयोग करबाक लेल अनावश्यक स्वास्थ्य सेवा व परीक्षण के मांग नहीं करय अनुरोध कयलक अछि। अहिना बोर्ड चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी के आवश्यकता से अधिक परीक्षण व उपचार के लिए दबाव नहीं देबाक लेल तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के टिकाऊ आ प्रभावकारिता कायम राख अपन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर देबा लेल सेहो आह्वान कयलक अछि। वर्तमान सरकार गठन भेल एम्हर कार्बन व्यापार से प्राप्त रकम परिचालन से लऽ कऽ प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति के प्रभावकारी बनाबा उल्लेखनीय प्रगति भेल अछि। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्रालय वर्तमान सरकार गठन भेल एम्हर
विकास आ योजना निर्माणक लेल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति तथा वन क्षेत्र के जमीन उपयोग संबंधी प्रक्रिया के थप प्रभावकारी बनौलक अछि। एहि के लेल किछु नेपाल ऐन के संशोधन करय वाला अध्यादेश 2083 मार्फत वन ऐन 2076 के संशोधन भ कार्यान्वयन में अनलक अछि। सेवा प्रवाह में चुस्तता तथा विकास निर्माण में सहजीकरण हेबासन विद्यमान वातावरण संरक्षण ऐना नियावली राष्ट्रीय निकुंज तथा वन्य जंतु संरक्षण ऐन तथा नियावली के मस्यौदा तैयार भेल मंत्रालय जनौलक अछि। ऐना कार्बन नियावली स्वीकृत भ कार्बन राष्ट्र रजिस्ट्री मार्फत कार्बन व्यापार के सहजीकरण कयने विषयगत मंत्रालय आ निजी क्षेत्र के क्षमता विकास कार्यक्रम संचालन

मनविक ऊपर आक्रमण का हत्या कैल गेल घटना संबंधी मुद्दा में जिला अदालत महतरी 2080 अगहन 28 गते लक्ष्मी महतो के सफाई देने चल मुदा अ फैसला के उल्टावित उच्च अदालत जनकपुर धाम 2083 अखाड़ 17 गते मुलुकी ऐन ज्ञान संबंधी महल के दफा 17920 बमोजिम 5 वर्ष के कैद सजा हेबाक फैसला सुनौलक। बीतल वर्ष के परंपरा तोड़ित सरकार चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 में महतरी के कुसियार किसान के अनुदान रकम निकासा करवाक तैयारी कलक अगला वर्ष में कृषि विभाग कुसियार क्रसिंग संपन्न भेल लगभग 10 महीना पश्चात आसिन कार्तिक दिस मात्र अनुदान पठबैत आयल बावजूदो अ वर्ष असारे में बजट पर्याप्त भेला से किसान के बैंक खाता में रकम पठेबाक तैयारी भ रहल कोष तथा लेखा नियंत्रण कार्यालय महतरी जनौलक। समय में अनुदान भेटलाक बाद कुसियार किसान सरकार प्रति आशा भरोसा बढ़ल प्रतिक्रिया दिलक। कोलोनिका के प्रमुख बालकृष्ण अधिकारी के हिसाबे गत आर्थिक वर्ष प्रति क्विंटल 35% अनुदान उपलब्ध कराएल गेल छल। अ वर्ष जिला ऊखू अनुदान भुगतानी समिति के सिफारिश हिसाबे प्रति क्विंटल 70% के हिसाब से 20,07,59,000 प्राप्त भेल अछि। गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ के बिक्री का मानव स्वास्थ्य संघ प्रत्यक्ष खिलवाड़ करय वाला धमसा के आधा दर्जन होटल के संचालक सब के आर्थिक जरिमाना सहित के कार्रवाई भेल अछि। मध्य प्रदेश के गृह संचार तथा कानून मंत्री फकीरा महतो के नेतृत्व में जिला प्रशासन कार्यालय खाद्य प्रविधि तथा गुड़ नियंत्रण कार्यालय जनकपुर धाम के अगुवाई में गुणस्तर मापन करय वाला मशीन सहित अनुगमन कैला पर मानव स्वास्थ्य संघ खिलवाड़ करय वाला खाद्य सामग्री सब के उपयोग कैल गेल भेटल गेला से होटल के संचालक सब के ऊपर कार्रवाई कैल गेल अछि। धनसा के सहायक प्रमुख जिलाधिकारी एवं बाजार निरीक्षक कृष्ण गैरे के आदेश में के कसूर के मात्रा पर आधार पर धमसा के लक्ष्मीनिया में संचालन रहल चर्चित बाबा के ढावा होटल के 35,000 बाजे के सकुआ के 75,000 रॉयल सम्राट होटल के संचालक के 5,000 आ बर्गर हाउस के 35,000 जरिमाना कैलक। अनुगमन टोली धमसा के 10 होटल के अनुगमन कैला पर अखाद्य पदार्थ के बिक्री वितरण कैल गेल। म्याद समाप्त भेल खाद्य सामग्री के उपयोग होइत आयल सर सफाई के व्यापक प्रभाव अभाव रहल कहित कार्रवाई करबाक काज भेल सहायक प्रमुख जिलाधिकारी गैरी अके जानकारी दिलन। आ मौसम समाचार। देशे भर मानसून वायु के प्रभाव कायम रहला से आई अधिकांश स्थान में वर्षा के संभावना रहल। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि अखन देशे भर साधारणतः बादल लागल अछि। बागमती कोसी आ लुम्बिनी प्रदेश के किछ स्थान में मेघगर्जन ठनका सहित मध्यम वर्षा भ रहल अछि। आई रात देशे भर साधारणतः बादल रहत। कोसी बागमती आ गंडकी प्रदेश के हिमालय क्षेत्र के किछ स्थान तथा कर्णाली सुदूर पश्चिम आ लुम्बिनी प्रदेश के हिमालय क्षेत्र के किछ स्थान में मेघगर्जन आ ठनका सहित मध्यम वर्षा तथा हिमपात के संभावना अछि। संगे पहाड़ी आ तराई क्षेत्र के किछ स्थान में मेघगर्जन आ ठनका सहित मध्यम वर्षा होयत। महाशाखा कोसी बागमती गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई क्षेत्र के एक दो स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहला से क्षेत्र के बासिंदा के सतर्कता अपनेबाक लेल अनुरोध कलक अछि। आब खेल समाचार। अल्जीरिया के पराजित करित स्विट्जरलैंड फीफा विश्वकप फुटबॉल 2026 के अंतिम 16 में प्रवेश कैलक। कनाडा के वैनकूवर स्थित बीसी पैलेस स्टेडियम में भेल खेल में स्विट्जरलैंड अल्जीरिया के 2-0 गोल अंतर से पराजित कैलक। स्विट्जरलैंड के लिए ब्रिल एम्बोलो आ डान एंडोले एक एक गोल कैलथ। ब्रिल खेल के 10 मिनट में गोल करे स्विट्जरलैंड के अग्रता दियोलन। खेल के पहल हाफ में 1-0 गोल के अग्रता बनौनी स्विट्जरलैंड दोसर हाफ शुरू भेल 1 मिनटे में गोल कलक। खेल के 46 मिनट में डान गोल करे स्विट्जरलैंड के 2-0 गोल के अग्रता दियोलित वही पश्चात खेल में थॉप गोल हो बने सकल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पश्चिमी पाकिस्तान में आई एकटा यात्रुवाहक बस सड़क से नीचा खसला 20 मीटर नीचा खसला से दुर्घटना भेला से कमती में 40 के मृत्यु भेल अधिकारी बतौलक। क्वेटा से पेशावर जा रहल यात्रुवाहक बस पहाड़ी दाना सार क्षेत्र के गहीर नदी में खसला से 40 के मृत्यु भेल आ 11 घायल भेल पुष्टि भेल। झोव जिला के आपातकालीन केंद्र के प्रमुख सनाउल्लाह सिरानी बतौलने। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास सुन रहा मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। विभिन्न विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त उपकुलपतियों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पद पर मान बहादुर कार्की को नियुक्त करने की संवैधानिक परिषद ने की सिफारिश। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ने चालू आर्थिक वर्ष के मार्गशीर्ष तक की 23 अरब 44 करोड़ बकाया राशि की की भुगतानी। मानसून से संभाव्य आपदा में जनधन की बड़ी क्षति न होने देने और उद्धार कार्य को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस की पूर्व तैयारी हुई पूरी। मानसून के दौरान काठमांडू घाटी में मेलमची पेयजल की आपूर्ति रहेगी बंद। और पाकिस्तान में एक बस हादसे में कम से कम 40 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री तथा विश्वविद्यालयों के सह कुलपति सस्मित पोखरेल ने आज मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त उपकुलपतियों को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री एवं विश्वविद्यालयों के कुलपति बालेंद्र शाह ने आज ही 7 विभिन्न विश्वविद्यालयों में उपकुलपतियों की नियुक्ति की थी। विश्वविद्यालय उपकुलपति चयन एवं सिफारिश समिति द्वारा सिफारिश हुए उम्मीदवारों में से कुलपति शाह ने उपकुलपतियों की नियुक्ति की। मंत्री पोखरेल ने नवनियुक्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्राध्यापक डॉ भोला थापा, सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति किशन दत्त भट्ट, मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति राजन सुवाल, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय के उपकुलपति ऋषिराम कटेल, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्याम नारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति देवेंद्र अधिकारी और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के उपकुलपति सुजन बाबू मरहट्टा को शपथ दिलाई। संवैधानिक परिषद ने मान बहादुर कार्की को मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की है। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में आयोजित परिषद की बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्की की सिफारिश करने का निर्णय किया गया। बैठक में रिक्त निर्वाचन आयुक्त पद पर डॉ. राजीव सुब्बा और आषाढ़ 23 से रिक्त होने वाले निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए गुरुप्रसाद वागले की सिफारिश करने का भी निर्णय किया गया। बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए परिषद की सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा की उपसभामुख रूबी कुमारी ठाकुर ने बताया कि रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित नामों की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में विनियोजन विधेयक 2083 के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय योजना आयोग और गृह, रक्षा, विदेश, वित्त, अवसंरचना विकास, ऊर्जा, जल संसाधन एवं सिंचाई, कृषि, वन एवं पर्यावरण तथा उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्रालयों के बजट विनियोजन पर चर्चा हुई। चर्चा में सांसदों ने आवश्यकता के आधार पर बजट आवंटित करने, राष्ट्रीय गौरव की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने लगायत बातों पर जोर दिया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1:15 बजे बुलाई गई है। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ने सेवा प्रदाता स्वास्थ्य संस्थानों का चालू आर्थिक वर्ष के मार्गशीर्ष तक का बकाया भुगतान कर दिया है। बोर्ड ने आज जारी विज्ञप्ति में बताया कि 23 अरब 44 करोड़ 2,98,015 रुपए की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसके साथ ही मार्गशीर्ष तक के सभी लंबित दावों का निपटारा हो गया है। बोर्ड ने कहा कि पोस्ट से लंबित दावों के भुगतान के लिए आवश्यक बजट की व्यवस्था और स्थायी वित्तीय स्रोत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित निकायों के साथ समन्वय जारी है। बोर्ड ने सभी सेवा प्रदाता स्वास्थ्य संस्थानों से स्वास्थ्य बीमा के तहत बीमित नागरिकों को बिना किसी बाधा के निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही बीमित नागरिकों से स्वास्थ्य बीमा सुविधाओं का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने और अनावश्यक जांच या उपचार की मांग न करने की अपील की गई है। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों से भी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की प्रभावशीलता और दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखने में सहयोग देने का आग्रह किया। मेलमची पेयजल विकास समिति ने मानसून अवधि भर के लिए काठमांडू उपत्यका में मेलमची के पानी की आपूर्ति बंद कर दी है। समिति ने बताया कि मुहाना क्षेत्र के ऊपर भूस्खलन, मलबा और बाढ़ के कारण सुरंग में मिट्टी और पत्थर प्रवेश करने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही पानी में अधिक गाद होने से सुरंग की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसी कारण मानसून समाप्त होने तक पानी का डायवर्जन रोक दिया गया है। समिति के अनुसार इस अवधि में सुरंग की सफाई, मरम्मत और निरीक्षण भी किया जाएगा। मानसून समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द मेलमची का पानी फिर से काठमांडू उपत्यका में आपूर्ति शुरू की जाएगी। इस बीच वैकल्पिक स्रोतों से पेयजल आपूर्ति जारी रखने के लिए काठमांडू उपत्यका खाने पानी लिमिटेड के साथ समन्वय किया जाएगा। नेपाल पुलिस ने मानसून से संभाव्य आपदाओं से जनधन की क्षति कम करने और राहत एवं बचाव कार्य को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्रीय पुलिस प्रवक्ता DIG अविनारायण काफले ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से लेकर स्थानीय चौकियों तक आवश्यक उपकरणों के साथ पुलिस बल को तैयार रखा गया है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल तैनाती के लिए 10,085 पुलिसकर्मियों को तैयार रखा गया है। उन्होंने कहा कि जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान, बचाव उपकरणों का रखरखाव और विभिन्न सुरक्षा निकायों के साथ समन्वय पहले ही किया जा चुका है। मानसून के दौरान राहत एवं बचाव अभ्यास और सामुदायिक जनचेतना कार्यक्रम भी संचालित किए गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय निकायों और संबंधित संस्थाओं के सहयोग से अतिरिक्त बचाव सामग्री की भी व्यवस्था की जाएगी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलिकम को 4G

0: नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण देश के विभिन्न स्थानों पर अवरुद्ध हुए प्रमुख राजमार्गों में से 3 सड़कों को फिर से संचालन में लाया गया है, जबकि जाजरकोट डोल्पा को जोड़ने वाला भेरी कॉरिडोर अभी भी बंद है। नेपाल पुलिस के केंद्रीय प्रवक्ता DIG अभिनारायण काफले के अनुसार आषाढ़ 15 को भूस्खलन के कारण बंद हुई अर्घाखांची जिले की पाणिनी गांवपालिका 2 स्थित साल झंडी ढोरपाटन सड़क, आषाढ़ 17 को भूस्खलन के कारण बंद हुई पालपा जिले के तानसेन नगरपालिका 8 के डुमरी क्षेत्र में स्थित सिद्धार्थ राजमार्ग और आषाढ़ 18 को भूस्खलन से अवरुद्ध हुए चितवन जिले की इच्छा कामना गांवपालिका 6 स्थित मुगलिन नारायणगढ़ सड़क खंड को पुनः यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसी प्रकार आषाढ़ 17 को लगातार हुई बारिश के कारण रुकुम पश्चिम जिले के 8 बिस्कोट नगरपालिका 6 के रिजेगाड़ खोला क्षेत्र में स्थित जाजरकोट डोल्पा को जोड़ने वाला भेरी कॉरिडोर अभी तक पूरी तरह बंद है। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्रालय ने बर्ड फ्लू से प्रभावित किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए बजट का पुनर्विनियोजन करते हुए पशु सेवा विभाग को 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मंत्रालय ने बर्ड फ्लू की पुष्टि होने वाले 11 जिलों में नष्ट किए गए पक्षियों, अंडों और पशु चारे के नुकसान की भरपाई के लिए ये राशि विभाग को उपलब्ध कराई है। औषधि व्यवस्था विभाग ने देश में दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और दवा बाजार को अधिक व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से 6 सूत्रीय निर्देश जारी किए हैं। औषधि व्यवस्था विभाग की कार्यवाहक महानिदेशक शिवानी खड़गी ने बताया कि दवाओं की आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने और बाजार को व्यवस्थित करने के लिए ये निर्देश स्वदेशी दवा निर्माताओं, आयातकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए जारी किया गया है। निर्देश के अनुसार सभी स्वदेशी दवा निर्माता और दवा आयातकों को अपने अधिकृत थोक विक्रेताओं के साथ लिखित समझौता

0: शुरू किया गया है। निजामती कर्मचारी अस्पताल की सेवा इकाई का संचालन अब सिंहदरबार से ही शुरू हो गया है। ये सेवा इकाई भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय की इमारत के भूतल पर आज से संचालित की गई है। मंत्रालय ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को आसानी और शीघ्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अस्पताल की इस सेवा इकाई की शुरुआत की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सीमा पर स्थित दाना सर क्षेत्र में एक बस हादसे में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं। बलूचिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि यह हादसा शेरानी जिले में एक यात्री बस के साथ हुआ। क्वेटा में रेस्क्यू 11-22 के एक प्रवक्ता के मुताबिक बस क्वेटा से पेशावर जा रही थी। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री के सहायक शाहिद दुरिंद ने दुर्घटना में 40 लोगों की मौत की पुष्टि की और कहा कि 8 यात्री घायल भी हुए हैं। उनका कहना है कि शुरुआती जानकारी से पता चला है कि हादसे की शिकार बस में अपने यात्रियों के अलावा एक अन्य बस के यात्री भी सवार थे, जो खराब हो गई थी। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक बस एक गहरी खाई में गिर गई, जिससे यात्रियों तक पहुंचना और उन्हें बचाना मुश्किल हो गया। दुर्घटना स्थल से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि बस पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। बीती फरवरी में अमेरिका और इसराइल के हवाई हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार घोषित समय से पहले शुरू हो गया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक पहले यह घोषणा की गई थी कि इस्लामिक गणराज्य के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का अंतिम संस्कार शुक्रवार शाम को शुरू होगा, लेकिन विदेशी मेहमानों की ओर से श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो चुका और जारी है। इरना के अनुसार इसमें शहीद क्रांतिकारी नेता और उनके परिवार के कई सदस्यों के शवों को तेहरान मोसाल्ला के मंच के सामने रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा अरेफ तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों व प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत कर रहे हैं। इरना का कहना है कि अली खामेनेई के दामाद मिसबाह अल होदा वघेरी कानी को भी शुक्रवार को तेहरान के पश्चिम में शहरान स्क्वायर और कानी गांव में दफनाया जाएगा और संभवतः बाद में उन्हें मोसाल्ला ले जाया जाएगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त उपकुलपतियों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पद पर मान बहादुर कार्की को नियुक्त करने की संवैधानिक परिषद ने की सिफारिश। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ने चालू आर्थिक वर्ष के मार्गशीर्ष तक की 23.44 अरब बकाया राशि की भुगतान। मानसून से संभाव्य आपदा में जनधन की बड़ी क्षति न होने देने और उद्धार कार्य को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस की पूर्व तैयारी हुई पूरी। मानसून के दौरान काठमांडू घाटी में मेलमची पेयजल की आपूर्ति रहेगी बंद और पाकिस्तान में एक बस हादसे में कम से कम 40 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
1: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नुपर्ने होइन र?
2: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
3: *14#15# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: रेडियो नेपाल नयाँ नेपालको समावेशी आवाज राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार
1: सॉरी नमी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे प्लीज माफ कर दो
2: इट्स ओवर अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती

0: के थियो परिवन
1: के के छ र
0: ल आज दोहरी छ नि थाहा छैन कि क्या
1: हो मर अ
0: ल छिटै आउनु है ल।